0: Sara 107.8 FM.
1: भाइयों और बहनों, आज इधर लिंगी न बनने के मन में बहुत धूमधाम से होने वाला है

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत थी जन्नत है।